0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना,
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
0: बाबू आना, सुनते जाना।

0: हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे चाचा
0: तू जा जा, ए जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

0: लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी कालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।